0: ना दुख कोई लाई मेरे मालका, कदे मावां नूं ना दुख कोई लाई मेरे मालका।
1: चलो ये दुख इदां दा जिहड़ा असी कोई भी अपने माँ पे नूं दुख ना होवे उहदे वास्ते ही कहिंदे कि प्रे करदे आ, प्रेरणा करदे आ कि ना दुख होवे ते परमात्मा वाकई ही ना ही दुख देवे तां वधिया लगदा। कविता सी ते अगे कुछ हासरस दीआं गल्लां साडी जोड़ी केदी ते जगमोहन आए सी पोस्ती ते माई मोड़ बन के अज साडे विच नहीं आ पर इन्हां दीआं जिहड़ीआं गल्लां बातां कीतीआं हमेशा ही याद रहणगीआं कुछ वधिया पल। हासरस भी जिंदगी जरूरी आ, कमेडी भी जरूरी आ, कमेडी दे विच आपां बड़ा कुछ कह जाने जिहड़ा कि उदा कहना औखा।
2: सो दोस्तो अज दी शाम दा नाम मेरे ख्याल तुहानूं याद होएगा, नवा नौ दिन पुराना सौ दिन। मैनूं शक पैंदा कि ते नवे बंदे यूनियन बना के मेरे आले दुआले ना फिरदे होण। सो एनी हो इंसान नूं अंदरों सोचना चाहिए है, ऐसी कोई गल नहीं, बुढ़ापा तो सब ते आना ही है, पर मेरा बुढ़ापे ने बड़ा घट समझौता होना जद भी आया। सो कई बंदे बड़े हाजिर जवाब होंदे ने। एक बंदा कितने पिंड च उत्थे बड़ा हवा हारा सीगा, हवा चल रही सी, दरख्त दे थले पिया सीगा, बड़े खूबसूरत अंग्रेजी ढंग नाल हवा खा रहा सी बैठा। तो एक बंदा आया कोल दी, कहिंदा गल सुनो यार, कहिंदा तू कोई काम कार भी करया कर, आराम नाल बैठा है। कहिंदा उहदा की फायदा है? कहिंदा जे तू कम करेगा तेरे को पैसे आउणगे। कहिंदा फिर? वह कहिंदा जे पैसे तेरे को आउणगे कहिंदा मकान खरीद ले। कहिंदा फिर? कहिंदा मकान खरीदया एक खूबसूरत जी लड़की ने, कहिंदा तू विआह करा ली। कहिंदा फिर? कहिंदा फिर जे खूबसूरत जी कुड़ी ने जब तू विआह करेगा फिर कहिंदा बच्चे होणगे। वह कहिंदा फिर? फिर कहिंदा बच्चों नूं खूबसूरत जिहा कहिंदा कोई तू बिजनेस च पा दी। वह कहिंदा फिर? कहना फिर बिजनेस दे विच तैनूं पैसे आउणगे होर। कहना फिर तू इदां करी पैसे जोड़ चाड़ ली फिर तू आराम नाल बैठी। कहिंदा तां मैं हुण भी बैठा। सो कई बंदे बड़े हाजिर जवाब भी होंदे ने, कई बंदे सारी जिंदगी उन्हां नूं बख्श हुंदी है, काम किसी ने कीता ही नहीं कईआं ने। सो दोस्तो आराम नाल तां वैसे तुसीं भी बैठे हो और तुसीं बड़े इतमान नाल प्रोग्राम का आनंद माण रहे हो, मैं थोड़ा बहुत मशहूर हाँ। सो लो तुहाडी कैसी फरमाइश मैं पूरी करन जा रहा हाँ, जिहड़े प्रोग्राम के शुरू तो ही सी, वो है माई मून और पोस्टी की। सो लो मैं तो कैसी तो बगैर छुट्टी मिल जाएगी, पर नहीं, तुहानू पता ही है भी हसना एक जिंदगी है। सो लो जगमोहन जी,
3: हाँ जी हाँ जी जरूर,
2: आर यू रेडी फॉर माई मोनो?
3: यस यस बिल्कुल,
2: ओके राइट गो अहेड।
3: वे पोस्टियां
2: हा हा हा,
3: वे मर जाने आ पिकडरी सर्कस की करदा फिरदा इथे तू?
2: मैं क्या माई मोनो?
3: हां हां
2: गुड आफ्टर दोपहर जी।
3: वे आफ्टरनून कहला, दोपहर की हुंदा?
2: माई मोनो
3: हां
2: तैनू पता ही है
3: की
2: वे मैं अंग्रेजी नु मुंह बहुत घट मार,
3: आजकल इथे इंग्लैंड आ अंग्रेजी बहुत ही बोलण लग पई।
2: माई मोनो
3: हां
2: ए पिकडरी सर्कस
3: ਹੋਰ ਕੀ?
2: ਮੈਂ ਜੈਮਨੀ ਸਰਕਸ ਸੁਣੀ
3: ਹਾਂ,
2: ਕਈ ਸੁਣੀ ਹੈ,
3: ਇੱਥੇ
2: ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ
3: ਭਾਈ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ,
2: ਕਿਆ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ
3: ਸੱਚੀ ਗੱਲ।
2: ਮਾਈ ਮੋਨ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,
3: ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
2: ਮਾਈ ਮੋਨ
3: ਅਮਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮਰ ਜਣੇ ਆ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਦਾ
2: ਕਿਹੜਾ
3: ਖੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ,
2: ਆਹੋ ਜੀ
3: ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ।
2: ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਈ
3: ਹੋਰ ਕੀ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
2: ਉਹ ਹਾਂ ਮਾਈ ਮੋਣ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ
3: ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ,
2: ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ।
3: ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ?
2: ਮਾਈ ਮੋਣ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਉਹ,
3: ਅੱਛਾ
2: ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ,
3: ਆਹੋ ਆਹੋ
2: ਕਹਿੰਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਮੋਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ,
3: ਅੱਛਾ
2: ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ,
3: ਅੱਛਾ
2: ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਖਾਓ,
3: ਅੱਛਾ
2: ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ,
3: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ,
2: ਅੱਖਾਂ ਬਲੌਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ,
3: ਅੱਛਾ
2: ਚਾਲ ਦੇਵਾਨੰਦ ਵਰਗੀ,
3: ਅੱਛਾ
2: ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜੀ,
3: ਅੱਛਾ
2: ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ।
3: ਮਰ ਜਣਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਠਿਗਣਾ ਗੰਜਾ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚ।
2: ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਈ ਮੋੜੋ,
3: ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ?
2: ਮੈਂ ਉਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਥਾਣੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ।

0: चल मेरे घर चल।
1: तो कहानी सुनते हैं अनपढ़ माँ की कहानी जिहड़ी आ इहदे विच भी कुछ ना कुछ छुपिया, कुछ गल्लां छुपियां, कुछ रिश्ते छुपियो, कुछ हदायतां छुपियां। चलो सुनते हैं कहानी, किवें लग्या कहानी, किस तरह लगी जां प्रोग्राम किस तरह लगा जरूर दस्या करो। फोन नंबर 9676399999। अनपढ़ मां की कहानी अगे सुन दें।
2: वकास एक कामयाब आदमी बन चुका था, गाड़ी बंगला बेहतरीन नौकरी जो आजकल एक कामयाब शख्स कहलाने के लिए बेहद जरूरी शुमार किया जाता है। उसने अपने आबाई इलाके को छोड़कर महंगी सोसाइटी में घर ले लिया, शादी भी की, ऊंचे खानदान की लड़की घर ले आया। कुछ अरसा गुजरा तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, देखो मैं तुम्हारी माँ के साथ रह नहीं सकती क्योंकि वो एक अनपढ़ औरत है, मुझे किसी को बताते हुए भी शर्म आती है, ये मेरी सास है, लिहाजा मुझे एक अलहदा घर चाहिए, या अपनी माँ को कहीं दूर छोड़ाओ। और फिलहाल मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। वो काफी हैरान होकर बोला, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन उसकी रोज रोज की जिद और लड़ाई से तंग आकर आखिर एक दिन उसने हथियार डाल ही दिए और अपनी माँ से इस बारे में बात करने पर आमादा हो गया। आज रात जब वो घर आया तो अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा माँ के कमरे में चला गया। माँ अपने लखते जिगर को आज अपने कमरे में देखकर खुश हुई और बैठने का बोला। हाल अहवाल पूछने के बाद माँ ने आज इस तरह बजाय अपने कमरे में जाने के सीधा उसके कमरे में आने की वजह पूछी तो कहने लगा, माँ मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि आपके तमाम एहसानात का बदला चार गुना करके आपको वापस कर दूँ। ये हिसाब चुकता करके मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं और घर ले लूँगा, मैं और मेरी बीवी वहीं रहेंगे और आप आराम से यहीं रहिएगा। माँ ने जवाब दिया, बेटा हिसाब जरा लंबा है, इसके लिए थोड़ा वक्त दरकार है। वो बोला, कोई बात नहीं अम्मा, जल्दी भी क्या है, आप आराम से हिसाब कर लीजिए। इतना बोलकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। रात जब गहरी होने लगी तो माँ ने एक जग में पानी भरा और बेटे के कमरे में जाकर उसके बिस्तर की एक तरफ डाल दिया। बेटे ने जब इस तरफ करवट ली, पानी की वजह से उसकी आंख खुल गई। जब देखा कि माँ हाथ में जग लिए खड़ी है और बिस्तर पर भी पानी है और बिस्तर पर पानी भी उसने ही डाला है तो कहने लगा, अम्मा ये आप क्या कर रही हैं। माँ बोली, बेटा अपने बचपन में पता नहीं कितनी दफा तूने मेरा बिस्तर इसी तरह गीला किया और मैं गुस्सा करने की बजाय तुम्हें खुश्क जगह पर डाल देती और खुद गीली जगह लेट जाती, बल्कि बाज़ुकात अपने पेट पर भी सुला लिया करती। सोचा तुम्हें बता दूं, हिसाब चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब तुम इसी घर में रहो, मुझे कहीं भी एक कमरे का घर ले दो या तुम्हारे घर के पिछली तरफ का कमरा ही मुझे दे दो, मैं वहीं रह लूंगी। वो उठकर बैठ चुका था और उदास आंखों से माँ की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि माँ को क्या जवाब दे। माँ कुछ देर रुककर अपने कमरे में जा चुकी थी। ये काफी देर तक जागता रहा और फिर अचानक उसने एक फैसला किया और सुकून की नींद सो गया। सुबह हुई, बीवी को घर बुलाया, उसकी पसंद की कुछ चीजें मुहैया की और कहा, यह बताओ तुम्हारी अम्मी कहाँ रहती हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको मालूम तो है मेरे भाई के घर में रहती है। बीवी ने जवाब दिया, अच्छा तो चलो एक काम करते हैं, हम अच्छा सा एक घर खरीदते हैं जिसमें तुम्हारी और मेरी अम्मी रहेंगी। बीवी बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मी अपने बेटे बगैर कैसे रहेगी, वहां उनका कौन ख्याल रखेगा। बीवी ने बुझे बुझे लहजे में जवाब दिया। शोहर ने कहा, जिस तरह आपको अपनी अम्मी का ख्याल है और होना भी चाहिए, बल्कि जो अपनी वालदा का खैर खा ना हो वो अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता, तो आप मुझे बताओ कि मैं अच्छा इंसान बनूं या ना बनूं। इस आदमी की हिकमत भरी गुफ्तगू से बीवी को समझ आ चुकी थी और फिर जब रात आई तो घर का मंजर भी अजीब समा पेश कर रहा था। रात दस्तरखान पर एक माँ, उसका बेटा, बहू, पोते पोतियां मिलकर खाना खा रहे थे। खुशियां बिखर रही थी। रात मियां बीवी की आंखों में आंसू और जुबा पर एक ही जुमला था कि यकीनन जो सुकून आज मिला है वो सुकून सारी जिंदगी ना मिल सका। तो प्यारे दोस्तों, माँ बाप की जात ऐसी जात है जो सारी जिंदगी हमें पालते पोसते बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, हमारी तालीम, सेहत, हमारी हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और आखिर में बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि 8 बच्चों को एक माँ ने पाला होता है। और फिर क्या होता है कि 8 बच्चों से एक माँ नहीं पलती। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप भी साहिब औलाद हैं। आज आप अपनी माँ, अपने बाप के साथ जैसा करेंगे, कल आपकी औलाद आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा आपने अपनी माँ बाप के साथ सलूक किया। अगर आपने अपनी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया तो कल आपके साथ भी अच्छा सलूक होगा, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है।
1: ये सी अनपढ़ माँ की कहानी। फिर निचोड़ यही निकलता कि जिन्ना असी अपनी माँ को प्यार करते हैं, दूसरा माँ दूसरे की माँ को भी उन्ना ही प्यार करिए। जे रिश्ते च दो इंसान परिवार बनाते हैं, पति पत्नी बन के, तो दोनों मावां उन्ना ही प्यार रिस्पैक्ट दे के चलिए तो रिश्ते वधिया चलणगे, और होना भी चाहिए।
3: सेवा करोगे तां, अदरवाइज नहीं।

0: अक्सर मामां बच्चियां दे नाम रखदी।
1: बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया, ना भुलिया तेरिया चावां।
0: मैं जिदा पहला कहा सी कि मैं गल्लां बड़ियां सच्चियां ते कोरियां जे करनियां, पुत चाहे मेरे वर्गा काला जा क्यों ना होवे पर मां लई हीरा हुंदा। सही है ना गल, काले रंग ते भी टीका ला के तोर दिया, काले रंग दा किते नजर ना लगदा, आ हुंदा मां दा प्यार। पर असी की मुल पाउने मां,